0: संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो।
1: विगत 35 वर्षदेखिको सुमधुर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहनशाह।
2: क्यों भविष्य में चिंता क्यों पारे मोइन दी आकी वा आंगी गई इंश्योरेंस किया
3: ओहो थदई मरी गा चील मोमई
2: ये भयो समस्या खै विषय पैनिक आंगी प्लान तम
3: लौ छैली मो विषय मी नै बिनी छाबो बन्दिल परे
2: रिलायबल लाइफ इंश्योरेंस चिंता आंगी समाधान
3: छाबा मी छाबा रोजाए।
4: मुटु छाती एवं श्वास प्रश्वास का बिरामी का लागि खुशीको खबर।
5: मुटु रोग का बिरामी अब लमजुङ बाहिर जानु पर्दैन। मुटु को भिडियो जाँच अब सेवा मोडल हस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड मा।
4: पुरानो मेडिकल कलेज चितवन का वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डाक्टर मनोज श्रेष्ठ सेवा मोडल हस्पिटल मा आउनु हुने हुँदा मुटु श्वास प्रश्वास ब्लड प्रेसर का समस्या भएका बिरामीहरूले स्वास्थ्य जाँच गराउनु भई समयमा नै ढुक्क हुनुहोस्। साथै सोही दिन मुटु को भिडियो जाँच इको कार्डियोग्राफी सेवा पनि उपलब्ध छ। साथै सेवा मोडल हस्पिटल का सम्पूर्ण सेवाहरू पनि सुचारू हुनेछ।
2: जाँच हुने दिन र समय यही भदौ 20 गते तेस्रो शनिबार बिहान 9 बजेबाट।
4: स्थान सेवा मोडल हस्पिटल प्राली सानिमा बैंक अगाडि बेसी सरसात लमजुङ। सम्पर्क फोन नम्बर 066590999, मोबाइल 9847729629।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी

नेपाल ऋण खप्पै बिमगा छ। क्याल्भोलुम प्रविधि से शोभा आल्मोनियम कोटेन सादा थिन रंगीन जस्ता पाता उल्लास ड्यूरा कलर छ्यान भन्दा तीन गुना बढी विश्वसनीय प्रतिरोधात्मक थिन लानन टुबमुला।

0: सृष्टि हाम्रो चाहना।
1: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ।
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.